तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है ये शानदार गीत हमने निकाले फिल्म राजा जानी में से नेक दिन तुई सी फिर तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है जी हाँ। चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभिष जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। वो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा
1: मुझे

लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या हाथी से, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्ते में सत्य पे सत्ता में से निकाल कर आरती बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेगंतिन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के थी। अख्तन सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए हैं। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन। निगतिन नई खनन से 1979 का ये गीत।

दादाजी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए हैं नेक दिन नेक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

रमा रामा गजब होई गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

तुम ही तो हो जिसका सपना मैंने देखा था। ये शानदार गीत चला ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ।

महेंद्र कपूर जी और लता जी, ये दोनों मिल के बड़ा आदमी से में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं। और साज है चित्रगुप्त जी का, चित्रगुप्त के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, आप भी हैं और मैं भी, जैसे मैंने कहा। तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये धमाकेदार गीत सुनाएं।

नथनिया हाले तो बड़ा मजा होए, ये चटपटा चुटकुला गीत हम आपको सुनाए हैं फॉर हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये देखते हैं, ये लॉफिन टोक्यो का है। जी हाँ, लॉफिन टोक्यो, इस तरह से

फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाल कर ये प्यारा गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए ये गीत भी आपको सुना देता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर

जाने मन जाने मन एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की। आप भी हैं और मैं भी हूँ। अच्छा, तो आप दोनों हम दोनों हैं, आप श्रोताओं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? ये गीत के बोल थोड़ा, इसे सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सुन लीजिए।

फिल्म गैम्बलर में से निकाले हैं निगित एन से इवन तक का, ये देवानंद का गैम्बलर है, ग्रेट गैम्बलर नहीं, गैम्बलर निगित एन से इवन तक का ये गीत लता जी की आवाज़ में और एवन ग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वादिकर जी और लता जी, ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं। जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहाक शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है। जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डाका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज।

0: जले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया
1: चली हो कहाँ देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल ने की थी ए ने फैफ तखरफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगती द्रीन तख्त ए न फैफ तक से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फावर हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रीन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर तक, और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका खिलाफ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

माइकी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से माइकी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकिती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खस्की ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत।

गीत है, नेगेटिव तख्तक का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफी साहब की आवाज में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ्त का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

भक्तों, राम कथा एक दिव्य कथा है। ये कथा कलयुग में मानव के मलिन मन को निर्मल बनाने वाली है, पावनकारी कथा है। राम कथा एक जीवन दर्शन है। राम कथा में भाग्य का निराला खेल वर्णित है, तो मैं भाग्य के इसी निराले खेल को एक भजन का रूप दिया है।

जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ में, इस भवसागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार, फिर भी तेरे द्वार से मैया खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे। और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। जहाँ पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहाँ पे खुशी है वहाँ पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलकर हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है मूवी हम सफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलके सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है, देखा जाए तो देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम, नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे। जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किस मोड़ पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है। म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी, आनंद जी। हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोड़ पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, अल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

ज्यादातर मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। ब्याह सूर्य थे दोस्तों, आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून है द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एर्दे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: बाल
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों हम अगले सांस को लगा ही चुके हैं अगले गाने को और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण दो कल्याण शस्त्र का है यार और वो देखा जाए तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। कभी कभी हो जाता है चना नजर भी खफा हो जाते हैं लोग लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का आवाज है म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं मिलके सुनेंगे तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का, न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगे, लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुनो खोई मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर नहीं खनते ट्विंसेस्ट का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर, म्यूजिक शंकर जय किशन और लायरी से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर निकंदन ट्वेन सस्त का चलम आगे ले चलते, दूरी ना रहे कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुद के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, अ स्माइल ऑन माई लिप्स एंड टीयर्स इन माई आईज। इन अदर वर्ड्स आई फील अलाइव व्हेन आई हियर दिस नेम, लता।

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

सुंदर सा हनुमान चालीसा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी इतनी फास्ट इतनी चटक जो आप सुनते ही और इसे पसंद करने लगे होंगे। कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, क्यों कुछ भी हो जाए, जैसे भी विपरीति परिस्थितियां हो, तुम हारना नहीं और याद रखना तुम्हारा काम

ये सुंदर से बात है एक दादा दादी और एक पोता के। दादी बोली आंगन में मोर पंख मिला है। दादी बोली कि आंगन में मोर पंख मिला है, तो दादा बोला जरूर मोर आया होगा। पर पोता बोला हो सकता है कि कृष्ण जी आया होगा। ये दादा दादी और पोता का विचार है एक मोर पंख पर जो आंगन में मिला।

शकी और कुमार शानू जी की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत, हाँ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और नए सॉन्ग जो रिलीज किया गया है, पेश किया गया है आपके वास्ते। हम वो पीढ़ी है, हम वो पीढ़ी है जिसकी ना हंसी असली है ना खुशी, जिसके ना ख्वाब पूरे हुए और ना ख्वाहिशें। हम अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं पर किसी को एहसास तक नहीं होते हैं। हम अपनी हंसी से अपने दर्द और तकलीफ छुपा लेते हैं। हमें तजुर्बे हमारी उम्र से भी ज़्यादा है, हम अपने अंदर कई जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें समझना आसान नहीं है।

सुंदर सा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों की, भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, आप वाकई में भुला नहीं देना, क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, ये आशा उम्मीद के साथ कि आप जरूर से उस पार बैठकर और सुन रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, यही आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। जैसे भी परिस्थितियां हो मेरे प्यारे सुनने वालों, उसमें जरूर से खुशियां ढूंढो, खुशियां ढूंढो, खुशी से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगा और जो गम है ना वो दूर हट जाएगा। गम भी डर के भाग जाएगा, ये सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या काम है, तो हंसो मुस्कुराओ।

गणपति बापा डीजे रिमिक्स आपके लिए, डीजे रिमिक्स आपके लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये दिन आपको, ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ दे। कहते हैं कि जब जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नहीं, जब बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक परिवार में नया जीवन ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ ईश्वर की असीम कृपा, रहमत और बरकत भी लेकर आती है। उसकी किलकारियों से घर का आंगन महक उठता है, उसके मासूम कदमों से आशीर्वाद का प्रभाव होता है। बेटी केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके दुआओं का फल और उनके जीवन के सबसे सुंदर पूजनीय होती है। जिस घर में बेटी होती है वहाँ प्यार, अपनापन और सुकून का उजाला कभी कम नहीं होता। सच ही कहा गया है बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होता है।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sakuna Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
3: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, aaj bhi hamesha ki tarah humse tumse ek nata ban chuka hai. Jahan tak ye hamara paigham pahunche, wahan tak hamara प्यार पहुंचे और ढेर सारा दुलार पहुंचे. मैं हूं अनिल सरजू, जो आज अभी से लेकर 9 बजे से 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा. हम ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जहां पे मातम है, दुख है, काफी दुख हो चुका है. सुरिनाम में तीन जल के मर चुका है और एक के ऊपर पेड़ गिर गया है मशीन पे. हर एक घर में उन सबको हम बहुत अच्छी तरफ से जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं हर एक दिल, हर एक घर में जहाँ पे मुसीबत है, दुख है, मातम है, सुख है, सबको भगवान सहन शक्ति दे, इतना सहन शक्ति देते हर एक चीज सह सके और रह सके, क्योंकि काफ़ी दुख हो चुका है सूरीनाम देश में और जहाँ पे सुख है। इन हर दुख और सुख में हमारा पूरा टीम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारा जितना लीडर है, जितना उम्र पर है, हमारा डायरेक्टर है कुमार गिरावे, हम सब आपके दुख में शामिल है। जहाँ पे दुख है हर एक जगह पे इस वक्त दुख है, हर एक देश में दुख है, सुख है, खुशी है, हर एक दुख सुख खुशी में हम पूरा टीम से आपके साथ है। भगवान इसे सहन शक्ति दी और सब हर एक दुख सहने के लिए इतना ताकत दे कि हर एक दुख से वो मुक्त हो जाए और अपना जिंदगी को फिर से चलाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बताना फिर से एक बार चाहता हूँ कि 9 बजे से 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा आपके साथ, और कुछ पुराने गाने मैं आप लोग के आज सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मौसम की तरफ देखा जाए तो जैसा मौसम वैसा गीत हम आप लोग के सुनाएंगे। हम चलेंगे कुछ पुराने पुराने गाने लेके जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। आज प्रोग्राम को मैंने बना चुका है और मूवी दो बदन से मैंने कुछ गाने को सिलेक्टेड किया है जो मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं, और ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम रहेगा आज का, सवाल जवाब अभी रहेगा। अभी हम बताएंगे कौन सा वक्त हमारा सवाल और जवाब का प्रोग्राम रहेगा। तब तक के लिए हम चलेंगे मूवी दो बदन, लो आ गए उनकी याद, लता मंगेशकर की आवाज़ है और इसका म्यूजिक जो बजा करके सजा करके लाया है वो है रवि, जो हाथ चलाया गया है, जो लायरिक्स लिखा गया है वो है शकील बदायूनी, जो इसका लायरिक्स को लिखा है और काफ़ी अच्छे लायरिक्स को लिखा है, जो हाथ और स्याही चलाया गया है बहुत ही अच्छी है। चलो हम सब मिल के सुनेंगे इस गाने को, आप है तो हम है, हम है तो आप है, और भूल मत जाना हम सब चुने थे एफग्रिल्ला फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से।

लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई। और मूवी दो बदन का निकाला हुआ गाना है जो लता मंगेशकर की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अगले गाने सुनाने वाला हूँ जो मूवी दो बदन से निकाला हुआ गया है। और जब चले ठंडी हवा, हम आपके वो गाना सुनाएंगे, मिलके सुनेंगे। और देखा जाए तो यहाँ तक है हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम इसे सॉल्व करते हैं अभी यूट्यूब के प्रॉब्लम में। तब तक के लिए हम चलाएंगे इस सॉन्ग सुनते हैं, देखे है जाइए।

जी हाँ दोस्तों, जब चली ठंडी हवा, ये मूवी देखा जाए तो दो बदन का है और आशा भोसले की आवाज, इसका म्यूजिक फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, रफ़ी है जो सजा करके म्यूजिक को हम तक पहुँचाए हैं और इसका जो ना इसका हाँ म्यूजिक है रफ़ी और लाइरिक से शकील बदायूनी। ठीक है दोस्तों, हम आपको आगे ले चलते हैं और सुनाने वाली है मूवी दो बदन से, एक बार रहे गर्दिश में हर दम। देखा जाए तो ये गीत कुछ को नहीं यहाँ पे है। ठीक है, हम चलाएंगे रहा गर्दिश में, हम आप लोग के सुनाते हैं मूवी। देखा जाए तो दो बदन का है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, म्यूजिक रफ़ी है और शकील बदायूनी के लाइरिक्स है।

जी हाँ दोस्तों, रहे गणित विषय में हरदम पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवास और मूवी दो बदन शिकिल बदायूं का जो लाइरिक्स है और रफी का म्यूजिक है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से चलते हैं और कहते हैं हर घर में जहां दुख है। एक घटना हो चुका है सुरीनाम देश में, जो फिरन दत्तखियार ए नस्तखियार और सैफ नस्तखियार का तीन औरत जो जल के घर में गुजर गया है। और हमारा एक बहुत बहुत ही अच्छा जिसे हम जानते हैं, उसका भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है जहां सोना खोदा रहा था मशीन पे, उसका भी ध्यान हो चुका है। उन घरों में भगवान इतना ताकत दे, अल्लाह ताला इतना इसे इतना सब्र दे, हर एक चीज सहने के लिए और सहन शक्ति दे, कपड़ा हर एक चीज़ से दूर पास हो जाए और अपना ज़िंदगी को फिर से बेसोच के चलना चाहिए। दोस्तों, सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है और हम सब यही मांग सकते हैं अल्लाह ताला से और भगवान से मांग सकते हैं, सहन शक्ति दे भगवान, इतना ताकत दे कि अपना हर एक चीज़ सह सकता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे और देखो, जो भी नसीब में लिखा है वही होगा, ना उसे कम ना उसे ज़्यादा होगा। हम एक गाने को रखा है यहाँ इस चून पे रख चुका हूँ, नसीब में जिसकी जो लिखा है। और हम सब जानते हैं दोस्तों, ये नसीब का खेल है और हम उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते ही और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से मांग कर सकते हैं कि सहन शक्ति दे। नसीब में जिसकी जो लिखा है, उसका जो गाने वाला है वो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी है और इस हर चीज़ फिल्म का जितने गाना है रफ़ी साहब ने इसका म्यूजिक को बजाया है और शकील बदायूनी हर एक गाने का लाइरिक्स लिखा

0: था।
1: जी हाँ दोस्तों, नसीब में जिसकी जो लिखा था, और मूवी दो बदन का है और रफ़ी का म्यूज़िक है और शकील बादा यूनी के लायरिक्स है दोस्तों। ठीक है, हम आगे ले चलते ही एक और गाना है मूवी दो बदन का और भरी दुनिया में ये भी एक पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के गाया हुआ गाना है, गीत है जो काफ़ी अच्छी है। दर्द भरी गाने हम आप लोग के सुनाने वाले आज, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी दर्द है। हर एक दर्द में, हर कितने दर्द में है, कितनी सोच में है और कुछ कर नहीं पाते हैं, रोते हैं और सभी कुछ करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं कि इसलिए मैं दर्द वाले गाने को चला रहा हूं, लेकिन यह प्रोग्राम ही ऐसे मैंने बना चुका हूं कि आज कुछ गाने होंगे जो हम लोग के भी सुन के कुछ दर्द मिलेगा, कुछ एहसास होगा, कुछ सोच में चले जाएंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि हम सबको मांगना चाहिए ऊपर वाला से, हर एक को ऊपर वाला से मांगना चाहिए और मांगते हर एक की सहन शक्ति दे सहने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे सुनने वालों। आज जितने लोग रेडियो को सुनते हैं, कुछ बातें होगी जो मांग सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक रोज़ सभी को जाना है जहां वो सब चला गया है, लेकिन क्यों और किस लिए सब चीज़ हम लोग मांग के भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से मांग करके, अल्लाह ताला से दुआ करके हम चलेंगे। हर एक की ज़िंदगी सफल कर, हर एक के दुख पीड़ा से दूर कर, बचा के रख, अपने आप को बचा के रखना। जो भी करना है संभल के करना है, बचा के करना है। चलना है कहीं पे, कार में हो, रास्ते पे हो या बॉम में अपना काम कर रहे हो, बचा के हर एक चीज़ को करना चाहिए। और जो जो अभी मैंने गाना सुनाया है, नसीब में जिसकी जो लिखा है वो हो के रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को सोच के और विचार के चलना चाहिए, देख के चलना चाहिए। और यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारा पूरा टीम के तरफ से हम सभी के लिए सोचते हैं और दिल से दुआ करते, दिल से मांगते हैं कि कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, कितने देश में क्या क्या हो गया है। और सूरीनाम में जो घटना घटा है, उस पलवार को हम जरूर सहन शक्ति मांगे, ताकत मांगे कि वो सब चीज़ सह सके। चलो हम चलते हैं, घर देखा जाए भरी दुनिया में।

पूरी दुनिया में। अभी आप सुन रहे थे दोस्तों पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और मूवी दो बदन, और रफ़ी का म्यूज़िक और शकील बदायूनी का लायरिक्स। और इस मूवी में काम किया है आशा परेख और मनोज कुमार ने। यहाँ तक हम आपको सुनाया मूवी दो बदन के कुछ गाने, हम आप लोग के लिए चलते हैं देखो जाए।

प्यार का मौसम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है दोस्तों। और ये गीत जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है तुम बिन जाऊँ कहाँ। देखा जाए पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है, म्यूजिक एरदे बिरमन है, और देखा जाए मजरूत सुल्तानपुरी का लाइव से दोस्तों।

जहाँ दोस्तों तुम बिन जाऊं कहाँ। अभी आप सुन रहे थे पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज, एस देवी बर्मन का म्यूजिक, मजरूत सुल्तानपुरी का हाथ कलम और स्याही इसी ने चलाया है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आप लोग के लिए चलते हैं रुक जा रात तहर जा रे चंदा मूवी दिल एक मंदिर, और जिसमें काम किया है मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने। चलो हम मिलकर सुनते हैं क्या गाना है। हम कुछ पुराने पुराने गाने आप लोग को सुनाएंगे। आज का मौसम देखा जाए तो मौसम बढ़िया नहीं है, बच के निकलना बच के करना, परापली जिसे छाता कहते हैं लेके चलना, किसके पानी अभी बरसेगा। जहाँ भी जाना है अपना चीज खरीद के, जो काम पे नहीं है काम नहीं करते, घर पे बैठ के रेडियो को सुनिए, अपने गरम गरम कॉफ़ी पीजिए या ठंडा कॉफ़ी भी है आप इस्तेमाल कीजिए, और घर पे रहना खाना पकाना खाना या रेडियो को सुनना, रेडियो सुनना मत भूल जाना। देखा जाए हमारा आप में ऐप पे काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त रेडियो को सुनते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, इसलिए हम चलाते हैं आज सिर्फ पुराने गाने। और रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

कहते हैं रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की मेला। लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे और देखा जाए मूवी है दिल एक मंदिर जिसमें मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने काम किया है। हम आप लोग के लिए चलते हैं देखा जाए हम ले चलते कि एक ऐसा गाना, ये गाना मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ कि कुछ दम है इस गाने में, कुछ पुराना गाने हैं और ये गाने का है नी सुल्ताना रे। हम देखते हैं नी सुल्ताना में क्या देखा जाए। तो इसमें लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ है, एर दे बिरमन का म्यूजिक है और मजरूत सुल्तान पूरी की लाइरिक से जो काफ़ी अच्छे लाइरिक्स को लिखा है ये गाना मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ सच कहता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला के इसका पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। और देखा जाए तो मूवी अभी हम बताते, मूवी मैंने बता दिया है कि मूवी है, चला देखा जाए प्यार का मौसम जिसमें काम किया है आशा परेख शशि कपूर ने। हम आप लोग को ले चलते एक बार फिर से दिल एक मंदिर, और वो भी है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का गाना, शंकर जय किशन का म्यूजिक है, शैलेंद्र का लायरिक्स है, याद ना जाए।

जी हाँ दोस्तों, याद न जाए बीते दिनों के, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी दिल एक मंदिर। चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं एक बार फिर से प्यार का मौसम, जहाँ पे तुमने सुना था तुम बिन जाऊँ कहाँ, जिसमें काम किया था आशा परीख शशि कपूर ने। हम आप लोग ले चलते हैं इस गाने पे, ना जा मेरा हमदम, कुछ अच्छी ही गाने हैं और लता मंगेशकर का आवाज़ है।

0: कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा माँ खेंता वे 259 बाई ऑटो फॉर हीर बद्रेव अमालिया। सेर जैनिख ऑटो सोल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418-8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-18873. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: जी दोस्तों, अभी आप सो रहे थे न्यूज और रेखलाम, और हम चलेंगे फिर से, देखा जाए, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी, मूवी प्यार का, देखा जाए। जी हाँ, प्यार का मौसम से कुछ गाने मैंने चुन करके निकाले हैं, और नेखन जस्तक का ये मूवी है, और अभी हम आपको चलाएंगे, देखा जाए, लता मंगेशकर की आवाज़ हम आप लोग को सुनाएंगे, और उसका म्यूजिक जो बजाया है एयर देवी बर्मन है, मजरूत सुल्तानपुरी का ये लाइरिक से। दोस्तों चलो हम सुनते हैं, कुछ गाने हम सुनाएंगे जो हम भी नहीं कभी सुना है, और जैसा मौसम वैसा गाना।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज और मूवी दिल एक मंदिर। चलो हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं, देखा जाए तब। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं एक बार फिर से प्यार का मौसम मूवी का नाम है, और देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रख दिया है यहाँ चुन पे। जी हाँ, हम नहीं दिल एक मंदिर में ले चलते हैं, और गीत का बोल है हम तेरे प्यार में पागल हो चुके हैं, या ऐसे कुछ है। हम बनाते अपने हम तेरे प्यार में, और दिल एक मंदिर है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, जैसे मैंने कहा था शंकर जय किशन का म्यूजिक है, हर्षद जयपुरी का लायरिक्स है।

जहाँ दोस्तों हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। मूवी दिल एक मंदिर और लता मंगेशकर की आवाज आप सुन रहे थे। अभी मूवी मत भूल जाना, नहीं कंटिन 26 तक का है दिल एक मंदिर। ठीक है, मैं आप लोग एक बार फिर से ले चलते हैं प्यार का मौसम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है। चलो हम सुनाते हैं क्या गाना है यार, अंदाज में है।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज और प्यार का मौसम मूवी नेगेटिव ट्रेन से तक का है, नेखना से आज तक का, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है। चल हम आप लोग के लिए चलते हैं दिल एक मंदिर, जहां पे मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने काम किया है और जुना जाए इस गाने को गाया है, देखा जाए पद्मश्री मोहम्मद रफी और जुमन कल्याण भूरी, लाइरिक्स है हस्त जयपुरी और म्यूजिक है शंकर जय किशन का।

जहाँ दोस्तों दिल एक मंदिर है, मूवी का नाम भी है दिल एक मंदिर, और इस पे काम किया है मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार ने। ठीक है दोस्तों, हम एक बार फिल्म से आपको ले चलते हैं, देखा जाए तो। और इस गाने में जो अभी आप सुन रहे थे वो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और सुल्तान कल्याणपुरी है। हम आपको ले चलते हैं फिर से एक बार, देखा जाए तो हम देखते हैं हर एक चीज़ ऐसे हो जाते हैं ना, तो देखते हैं। हम आपको ले चलते हैं तिलक मंदिर था ये जो गाना है, हम यहाँ ले चलते हैं। चलो हम आपको सुनाते हैं, एक फराह सिंह भी हो चुका है, हम देखते हैं कौन सा गाना ये है। और ये भी मूवी मूवी तुम बिन के नहीं है, हम आप लोग के बताते हैं प्यार का मौसम है, मूवी प्यार का मौसम नहीं कहती निखिलन शस्त्र का है, और जिसमें शशि कपूर और आशा परेख ने काम किया है।

ज्यादा सभी आप सुन रहे थे पद्मा से मोहम्मद रफी की आवाज और प्यार का मौसम से निकाला हुआ गाना है आशा परेख और शशक पीर ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम में सवाल और जवाब भी है। काफी लोग सही जवाब को दिया था और सवाल था जो तोर है तो कमती खबरें करे दूसर कोई और ज्यादा खबरें करे, जो तोर है तू ना खबरें करे उत्तोर बाह मत हो के ना खबरें करे दूसर कोई ज्यादा यूज करे है। कौन चीज है? काफी अच्छे अच्छे हल आ चुका है, काफी अच्छे जवाब आ चुका है, लेकिन हमारा प्रोग्राम चलेगा 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा आज सवाल और जवाब का प्रोग्राम। देखा जाए दोस्तों दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, इंडिया से एक मेरा भाई जैसा है और देखो ये तारा दी प्रोग्राम को सुनते कहा लिखा भाई अनिल मोयन लीडर्स हो रे एक खनित इरफान खुरुचस

चम्मच को बचा के चलाना, कहीं गिर न जाए, कहीं छलक न जाए। ये बात ऐसी है और हर एक चीज बचा के करना। प्रोग्राम को दूर दूर से लोग सुनते हैं। अभी देखा जाए तो एलफ तो त्वालफ है, सवाल और जवाब काफी लोग है प्रोग्राम में, जो सच जो सही जवाब को दिया है। अभी हम उसके गाने को जरूर चलाएंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं। देखा जाए सुमन कल्याणपुरी की तरफ, बहुत अच्छी गाना है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जन सब आप सुन रहे थे ओ मेरी लाडली नंदी सी मेरी लाडली, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुरी से दोस्तों, जो अच्छी क्या अच्छा गाना गाया है ओ मेरी लाडली। चलो दोस्तों।

तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हम ये जो मूवी मंदिर दिलिक मंदिर का गाने ख़त्म हो चुका है, हम एक गाने और चलाएंगे प्यार का मौजम का, उसके बाद हम चलेंगे एक काफ़ी माँ है जो प्रोग्राम को सुनते हैं और माँ क्या बोलेगो, माँ के गाना हमें सुना दे। हर एक माँ जो प्रोग्राम को सुनते उसे हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और एक शुभ दिन कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहिए, हर एक माँ तो माँ है, ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहिए। माँ और माँ जी हम आपके साथ है, अगर आप हमारे साथ है तो क्यों हम आपके साथ न रहेंगे। सदा आपके चरण में मैं हूँ और सदा ऐसे चरण में बैठा रहूँगा। ठीक है, हम दो तीन गाने और घुमाएंगे आज फरमाइश है के आज जो प्रोग्राम है मेरा 11 बजे से के न्यूज और बयान के बाद 11 से 12 हमारा प्रोग्राम चलेगा सवाल और जवाब। दिल थाम के बैठिए, काफी अच्छा सवाल है और हम बताते हैं कौन कौन सही जवाब को दिया है। और जो लोग गाने मांगते हैं काफी अच्छे अच्छे गाने मांगते हैं, मस्त मस्त मस्त रहेगा एक घंटे का प्रोग्राम। हम चलाएंगे उसे और आप मांग करेंगे काफी अच्छे अच्छे गाने। हम जानते हैं जो लोग सही जवाब को दिया है काफी अच्छे अच्छे गाने को मांग करते हैं। हर रोज की तरह आज भी चलेंगे कुछ अच्छे अच्छे गाने, एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों, वक्त नहीं है, लेकिन फ्राइडे के हम फ्री रहेंगे, शुक्रवार को प्रोग्राम को हम आगे जरूर चलाएंगे सवाल और जवाब। तब तक के लिए हम चलते हैं मूवी प्यार का मौजम, जिसमें आशा परेख और शशि कपूर ने काम किया है।

0: जी दोस्तों, मूवी प्यार का मौसम और गाने वाले थे, गायिका थे लता मंगेशकर। और हर इस फिल्म में जितने गाना है उसका म्यूजिक बजाने वाला है एर दे बिरमन। हर एक गाने पे म्यूजिक के साथ दिया है एर दे बिरमन और उसका लाइरिक्स भी एक ही है, वो है मजरूत सुल्तान पूरी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपसे प्रोग्राम को कैसे मैंने सजाया है, अब हम चलेंगे एक गाना। हर एक माँ, कितने माँ है जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और मैंने एक आप ऐप पाया है कि माँ के लिए कुछ गाने सुना दे। ठीक है दोस्तों, हम सोचते हैं दो गाना हम चलाएंगे, एक गाना माँ के चलाएंगे और एक गाना हम अपनी तरफ से चलाएंगे, हमारा पूरा टीम के तरफ से चलाएंगे, फहुन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से हम चलाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे न्यूज और रिक्लाम, तब आएगा प्रोग्राम चटकेगा, सवाल और जवाब में हम आप लोग के लिए चलते हैं और उस जमाने में ले चलते हैं जहाँ काफी पुराने पुराने गाने लोग मांग करेंगे। आज का प्रोग्राम था, आज का जैसा मौसम है वैसे गाने को मैंने रख दिया है। कॉफी बना लिए, गरम गरम कॉफी बना के रख ले, ब्रेड कासी बना के रख ले, खाऊ न कासी निथर कमेन कासे बना के रख ले, कॉफी बना के रख ले, अभी चटकेगा प्रोग्राम सवाल और जवाब। तब तक के लिए हम चलते हैं, ये गाना हमारा पूरा टीम के तरफ है, हर एक माँ दुनिया भर के माँ के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। और यह गाना हम नए अंदाज वाला आप लोग के सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे क्योंकि मुझे भी कई गो माँ है, दुनिया के हर एक माँ मेरा माँ भी है और हम हर एक माँ के लिए ये कहते हैं आशीर्वाद से।
1: आ गई, आ गई।
2: पूरा खत्म कर लेते हैं, चलो जल्दी।

0: आई लव यू।
1: जी हाँ दोस्तों, आपने कहा था आई लव यू माँ, ये माँ का गाना था। ये गाना मैंने माँ के सुनाया है। हर माँ में तो वही ताकत है, वही दिल है, वही ताकत है। और हर माँ माँ होते ही अपनी जगह पे, हर माँ माँ होते हैं सबके जगह पे भी माँ माँ होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था दो गाना और चलेंगे, उसके बाद न्यूज चलेंगे, रेखलाम चलेंगे, तब प्रोग्राम को हम चटकाएंगे। लेकिन दबे पांव उसे कहते ही जैसा मौसम, मौसम देखा जाए तो बारिश हो रहा है। मैंने कहा था कॉफ़ी बना के रख ले और कास ब्रोच स्मेर करके रख ले, बना ले, क्योंकि बे 11 से 12 तक हमारा सवाल जवाब का फरमाइश से चलेंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब को दिया है। सवाल मत भूल जाना, क्या सवाल थे, जो तोर है वो तोर बा, तू कमती खबरें करे है, तू ना खबरें करे ज्यादा, दूसर कोई खबरें करे है ओकर अंतोर्थ बहुत मोई, अंतोर्थ और बहुत मोई सवाल भी है। और जे जे हल कहेगा, जे जे हल को सही हल को बताएगा, सही अंतोर देगा, हक बनते हैं एक गाने मांगने के लिए। और आज मौसम है, देखा जाए मौसम, घर वाल मौसम है और सब कोई बैठ के रेडियो को सुन रहा है प्यार से, काफी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया हर एक को। और अभी जो माँ के गाना था वो भी एक सवाल था, उसका जवाब देने वाला है कोई, है कोई जो अब हम उसका जवाब लाते हैं, और वो और कोई नहीं है, हरिओम शरण की आवाज़ हम आप लोग के सुनाते हैं, जो कहते हैं किसी की याद आती है। चलो हम आपको सुनाते को जैसे वाला गाना के मोई से सुनिए, तो जन माँ के गाना सुन रहे हरिओम शरण पुराने जमाने में अपना उसे जवाब देते हैं गाने पे।

0: जी हाँ दोस्तों, किसी की याद आती है तो गुनगुना लेते हैं, यही है जो हम सब इससे जोड़े हैं, जुड़ा हुआ है, जुड़ चुका है। कोई बिछड़ जाते, कोई यहाँ से कौन सा देश में रहते हैं, बस सदा याद ही रहता है, याद ही आता है। और बहुत बहुत बढ़िया बात है कि हम सब याद करते हैं, याद करते रहेंगे और याद करेंगे। याद बस किसी के याद से हम सब जुड़े हैं। ये जो माँ के गाना था, अगर बढ़िया से सुने तो ये उसका जवाब थे और एक एक बहुत अच्छा तरीके से, एक बहुत अच्छा, बहुत बहुत मोइस से और दोनों मैच हुआ है। किसी के याद आते अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ से। इसका म्यूजिक हरिओम शरण खुद ही कंपोज किया है और क्या अंदाज में इस गाने को गाया है, बहुत ही बढ़िया गाना है। अगर आप कभी गम में हैं, कभी सोच में हैं, भूल मत जाना, बस इस गाने को सुन लेना, किसी की याद आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, अब हम चलेंगे न्यूज और रिक्लामों की ओर। उसके बाद हम आते हैं, हाहाकार नहीं मचाएंगे लेकिन दबे पांव से कहते हैं, धीरे से हम सब चलेंगे सवाल और जवाब की तरफ।
1: कातुन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio,
6: Radio Fahun. Digitale radio, Fahun
7: FM.nl. Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: ये था भी न्यूज और कुछ रिक्लाम। दोस्तों हमने चलते हैं आपको, जैसे मैंने कहा था कि हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे चलेंगे, और मैंने कुछ ज़्यादा तो कह दिया कि हाहाकार नहीं मचेंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो मचेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया। सुनने वालों, ये प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रोग्राम है और सवाल जवाब का प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रोग्राम है, और ले रही है कुछ ना कुछ हम प्रेशर करेंगे उस जवाब को पाने के लिए सवाल पे। ये कुछ गलत प्रोग्राम नहीं है, हमारे देखें बहुत सही प्रोग्राम है, और इमें प्रेशर करके के कौन ची है अंतोर। जैसे मैंने पूछा था कि उचित तौर है लेकिन तो कम उसे इस्तेमाल करते हैं, कम यूज़ करते हैं, दूसर कोई ज़्यादा ओके यूज़ करते हैं, खबरें करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और सही जवाब तो आ गया है। मैं अब उसका हल बता रहा हूँ, बढ़िया से सुनिए। जो नहीं जानते कहों पे लिख के रख सकते, आप भी कभी कहों पे पूछ सकते हैं, काफ़ी दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पूछा था जो तोर है तो कम खबरें करते हैं, कमती उसे तो खबरें कर, दूसरा कोई और ज़्यादा है। तो पहला हुई अंतोर आया था, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। वो है मिस्टर अंद्रे जो हमारा साथ गाना को गा रहे हैं। हर इतवार को हम सब गाना गाते हैं, टेक चेंस करो कुपुर मर्सी के साथ गाना को गा रहे हैं। रामदयाल सिंह है अंद्रे, रामदयाल सिंह जो सही जवाब को दिया है, और सही जवाब ये है आपका खुद का नाम। अब भाई अंद्रे ने कहा अपना नाम, अब भाई अंद्रे अपन नाम दिन भर ना बोली, दूसर को यू के बुलावे से हम बुलाए भाई अंद्रे। एक बार बोले भाई अंद्रे फावका, भाई अंद्रे कैसे रह ले, मैं खुद भाई अंद्रे अपना नाम नहीं लेता है। हर कोई जो है अपना नाम नहीं लेते हैं, ज़्यादा दूसर कोई लेवे ना, तो अपना नाम को कम आप जो हम बोली जो तोर है तो कम खबरें करें, दूसरा कोई ज़्यादा, तो वो है अपना खुद की नाम। और भाई अंद्रे ने एक बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है, देखा जाए दुनिया क्या जाने, अब दुनिया का जाने मेरा अफसाना, देखा जाए तो ये नवजात का म्यूजिक है, और क्या गाना है यार, अंदाज वाला गाना हरदम भाई मांगते हैं, ऐसे ऐसे गाना मांगते हैं कि लोग भी सुन के, जो लोग गाना मैंने कई बार भाई गाना को मांगा, जो गाना मैं कभी नहीं सुना था, और अच्छे अच्छे गाना को मांग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था दबे पाँव जैसा मौसम वैसा गाना भाई भी मांगा है। हाहाकार तो नहीं मचेगा लेकिन फिर भी हाहाकार जैसा यह प्रोग्राम है, सवाल और जवाब पे भाई अंद्रे सही सही सही जवाब दिया है, और सही गाने को मांग क्या है, दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, आपका नाम करता हूँ भाई अंद्रे।

जी हाँ दोस्तों, नेक हम थे नेक नम फिर तक का ये मूवी है और ये गाना भी नेक हम थे नेक नम फिर तक में बनाया गया है। भाई अंदर बहुत विशाल गाना मंगल क्या गाना है और क्या आवाज़ है। मैंने इस पे नहीं लिखा कि कौन गाया, सुरैया है या कौन है या शमशान बेगम है, इस दोनों से एक है जो इस गाने को गाया है। और या ओके क्या गाना को मांगा भाई भाई अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं और आप बहुत पसंद करते हैं, सदा कहते हैं भाई अनिल बहुत बढ़िया यार प्रोग्राम बहुत बढ़िया बनते हैं फाहुन पे। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फाहुन क्यों कहते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं फाहुन हूँ। अगर आप लोग के कॉम्प्लीमेंट देना है तो रेडियो फाहुन को दीजिए, हर एक रेडियो को कहते हैं बस रेडियो फाहुन को दीजिए, हम रेडियो फाहुन से जुड़े हैं और आप सब रेडियो फाहुन से जुड़े। बहुत खुशी की बात है कि आप सब हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम लोग नहीं हैं। जब तक आप लोग हैं हम लोग हैं और हम सब जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं रेडियो फाहुन से। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले गाने। तरुण भाई, तरुण जो इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते हैं अनिल भाई अनिल क्या प्रोग्राम है यार, कितने अच्छे सा प्रोग्राम को कहते हैं और वो भी लाइक करते हैं, हमेशा सुनते हैं फाहुन को और सही जवाब को दिया है इंडिया में है, इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है अपने नाम, अपने नाम। ठीक है, अपना नाम हम खुद यूज नहीं करते हैं, दूसर लोग उस नाम को यूज करते हैं। आपको दिन भर लोग बुलाते हैं अनिल क्या है यार, अनिल क्या है, हम कई को ऐप पहले खाली अनिल अनिल अनिल, लेकिन वो अपना नाम को नहीं बोला है। तो मेरा सवाल पे जवाब है अपना खुद की नाम। और मांग किया है मूवी मंजिल से नहीं नहीं से इफन तक में, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी ने काम किया है। रिमझिम गिरे सावन, लता मंगेशकर की आवाज है दोस्तों, हम सब चलाएंगे और सुनेंगे। भाई तरुण आप प्रोग्राम को सुनते ही आप एकदम इंडिया पहुंचाए लोचा, आठ समुंदर के सात समुंदर पार आपके घर पे हम इस गाने को सुनाते हैं। आठ समुंदर नहीं है यार, सात समुंदर पार तो भी हम आपके काम तक इस गाने को पहुंचाते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बारंबार धन्यवाद हो, ऐसे ही सुनते रहना हमारा प्रोग्राम को। आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं रेडियो फाहुन से।

जी हाँ दोस्तों, मूवी मंजिल नहीं कहती नहीं जन जीवन तक, लता मंगेशकर का आवाज और इस फिल्म में काम किया अमिताभ बच्चन और मऊ जमीने और भाई तरुण जो इंडिया से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है और बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। भाई तरुण ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना हमेशा, हम सब जोड़े है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से एवरग्रीन लव लव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके घर तक मैंने गाने को पहुंचा दिया, प्रोग्राम को सुनते रहना और हम बढ़ेंगे आगे, वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग हैं, हमारा तुम्हारा मिलन 3 क्वार्टर और रहेगा और 3 क्वार्टर में हम देखते हैं हम कितने फरमाइशें सुना सकते हैं और उसके बाद एक सवाल भी करेंगे जो शुक्रवार के चलेंगे। आप सब सही जवाब देते रहना, सही गाने को मांगते रहना और देखो हमारा भाई अमृत जो हमारा हम लोग बगले बगले सुनाम में वेख नर पेपर पोत के हम लोग बाटी मेर सौरख के हम लोग बगले बगले रहली, हम लोग साथ साथ बड़ा हुआ हूँ और भाई अमृत प्रोग्राम को सुनते हैं सही जवाब को दिया है, कहीं पे दिल लग गया है, कहीं पे दिल खुश हो गया है और कहीं पे दिल चला गया है। दो दिल मिल जाए तो क्या बात है, ये एक शायद है, दो दिल मिल जाते तो क्या बात है, कहीं पे दिल चला गया है, कहीं पे दिल लग गया है और दिल रुकेगा नहीं, दिल सदा चलेगा। यहाँ भाई अमृत का दिल भी कहीं लग गया है ना भाई, इस गाने से जुड़ गया है हमारा भाई अमृत और सही जवाब को दिया है एक नाम और मांग किया है देखा जाए मूवी आनंद, फिल्म आनंद से निकला हुआ गाना है कहीं दूर जब दिन थ जाए और जिसमें रेस खन्ना सुमित देखा जाए, हाँ और रेस खन्ना ने काम किया है, अमिताभ बच्चन ने है उसमें और मांग किया है और कहीं दूर जब दिन झड़ जाए और इसका लाइरिक से युगेश जो लाइरिक्स को बजाए लिखा है। हम सुनाते हैं भाई अमृत, आप घर पे है बैठा लो चा पिए है बोले खूब बिस्कुट खाएगा, ठीक है सही बात है, मौसम ही कुछ ऐसा है कि कॉफ़ी पी बिस्कुट खा ब्रेड खा, ठीक है और प्रोग्राम को सुनते हैं ये गाना आपके नाम भाई अमृत।

जी हाँ दोस्तों, देखना शहर से अमृत मोहन जो प्रोग्राम को सुनते ही और सही जवाब को दिया है एक नाम और मांग किया था कहीं दूर जब दिन ढल जाए मूवी आनंद के, जिसमें अमिताभ बच्चन और एस खन्ना ने काम किया है दोस्तों, और इसका लायरिक जो लिखा गया वो है युगेश। जी हाँ, अमृत सही जवाब को दिया है और दिल तो लग गया है दोस्त, दिल लगना चाहिए इस गाने पर। क्या गाना है और ये गाना आपका दिल जीत लिया है, दिल लग गया ना गाने से। ठीक है भाई, अमृत मोहन है हमारा बगल में मेर सौरख वैद्यनाथ पेपर पोत के हम दोनों हैं, संग संग बड़ा हुआ है और सभी कुछ हम सब जानते हैं। सदा हम सब बढ़िया थे, हमारा बाप, हमारा माँ बाप, उसका माँ बाप, हर एक बहुत अच्छा नाता थे और वो नाता हम नहीं आज तक नहीं भूले हैं। ठीक है भाई, आपको सलाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम को छूते हैं भाई अमृत। ठीक है, सही जवाब दिया, सही गाने को मांग किया है। चलो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, मखंता में एक है जो अनोनिम रहना चाहता है, हम नहीं बोलेंगे भाई हैगा या बहन है, लेकिन कोई है जो अनोनिम है और सही जवाब को दिया है और मांग किया है, दो लफ्जों की है यही कहानी। अमिताभ बच्चन, जीना तमन, इस फिल्म में काम किया है द ग्रेट गैम्बलर। हम आपको ले चलते हैं जमाने में जब वो दोनों बोट पे चल रहा था, गाने को गा रहा था, हम सब देख देख के कहते थे क्या गाना है और क्या बोट है। दोस्तों देख चलेंगे, ले चलते हैं द ग्रेट गैम्बलर की तरफ, और वो है अनोनिम मखंता से, अनोनिम के नाम करते हैं

जी हाँ दोस्तों, दो लफ्जों की है यही कहानी। अनोनिम अनोनिम चला गया था माँ अखंता के तरफ। मूवी द ग्रेट गैम्बलर नई खनती नई खनन जईफन तक का है। और मांग क्या था हमारा मखंता का, इंदिरा गांधी बैग का, अनोनिम अनोनिम है उसका नाम, हो चुका अनोनिम। और सही जवाब को दिया था ऐ खनाम। ठीक है दोस्तों, सही जवाब अनोनिम और सही गाने को आपने मांग किया था। हम चलेंगे एक और अनोनिम है जो अभी ऐप पे आया था और कहता था सही जवाब अपन नाम, अपन नाम, अपना नाम या एक नाम। ठीक है, सही जवाब दिया था और अनोनिम रहना चाहता है और मांग क्या है, मूवी सफर, सफर नहीं कहती सईफन तक का फिल्म है और गाने का बोल है जीवन से भरी तेरी आंखें, किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये जो म्यूजिक सजा करके सुनाया है और लाया है हम सब के तरफ। और इस जो लायरिक्स लिखा है, हाथ कलम सिहाई चला गया है इंदिवर के लायरिक्स है दोस्तों। और रईस खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, अरुणा ईरानी इस

जी हाँ दोस्तों, सफर देखती नहीं नहीं सैफम तक का है और जीवन से भरी तेरी आंखें, ये मांग किया था। अनोनिम है, जनहा शहर का है। आप अनोनिम भी अपना गाने को मांग सकते हैं। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि काफ़ी लोग आपका नाम जाने आप कौन हो, यह भी सही बात है, गलत इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अनोनिम है, जनहा शहर से सही जवाब को दिया है। और किशोरदा की आवाज़ बहुत जी कहता था सुनने के लिए, और उसका फेवरेट नंबर है जीवन से भरी तेरी आंखें, और मैंने आपको सुना दिया।

उसी कल्याण जी आनंद जी ने बजाया है इंदिवर का ये लाइरिक्स है दोस्तों। ठीक है, हम अभी आप एक ऐप आया हूँ, हमारा जो कोलेखा हमारा बुबू है रहीम बख्श, जो आज उसका जन्मदिन है, हम 12 बजे से आधा घंटा रहेगा और जन्मदिन के उपलक्ष पर आज उसका जन्मदिन है, हमारा बहन है, हमारा कोलेखा है, फाहौन का एक उम्र उपस्तर है, बहुत सालों से वो यहाँ पे है, रेडियो पे है, हम कुछ फरमाइशें चलाएंगे हमारा बुबू के लिए। हम अभी से कहते हैं बुबू हफीज तेर में जफयार दख, अल्लाह ताला तुझे हर एक दुख से बचाए, हर एक सुख आपके दे और हर एक बीमारी से आपको बचाए, यही मांग करता हूँ। नाम सही लतीम फाहून, हम सब यही मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, ईश्वर से मांग करते ही, अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं, सदा खुश रहे, सदा हमारा साथ रहे, बस हर एक दुख से आपको बचा के रखे। अभी हम आधे घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे, कुछ गाने हैं, कुछ गाने हम सुनाएंगे जन्मदिन के गाने और कुछ और गाने हम आपके सुनाएंगे। बुबू हमारा कोलेखा है, हम दीदी का ही थे, सदा आज भी मुझे दीदी कहेंगे, बुबू कहेंगे और कुछ फरमाइशें हम चलाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, सवाल जवाब हो रहा है, देखा जाए। ममता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, जर्मनी से नॉइस से सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, बोले अपन नाम हम ना ले लो, दूसर कोई ले, सही जवाब है और मांग किया है, देखा जाए तो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुकेश की आवाज़ है और म्यूजिक है खयाम और लायरिक्स है सहीर लुफानी। चलो मिलकर देते हैं, सुनते हैं और ममता आपका नाम एकदम जर्मन में हम पहुँचाते हैं। ठीक है,

जी हाँ दोस्तों, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मूवी कभी कभी अमिताभ बच्चन राखी इसमें काम किया है और मुकेश ने की आवाज थे, कयाम का म्यूजिक थे और ऐसे मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों ये था जर्मन नॉइज, जहाँ पे ममता जी प्रोग्राम को सुनते सही जवाब को दिया है और बहुत ही खूबसूरत गाना को मांग किया है, जैसा मौसम वैसा गाना। ठीक है दोस्तों, हक बनता है मैं भी सही जवाब को दिया है, मैं भी सही जवाब को दिया हूँ। मैंने भी कहा था मैं ऐ का नाम कोई ना जाने है, ऐप पे हमू लिख के दिया अपने ऐप पे मैं ऐ का नाम, तो मुझे भी हक बनता है एक गाना चलाने के लिए। आप सब के लिए मैं इस गीत को चलाता हूँ और जब जी जब दीप जले, मूवी चिचोर जैसन जैफन तक का है, युदास हेमलता जो इसका जो सिंगर है और रविंदर जय म्यूजिक और रविंदर जय का हाथ कलम चला है जो इसको लिखा है। मेरी तरफ से मैं इन्हें भी सही जवाब को दिया है, हक बनता है मैं भी एक गाना चलाऊं यार, ठीक है ना, हक बनता है तो ठीक है। चलो आपके नाम करते हैं सवाल और जवाब।

जी हाँ दोस्तों, ये दूदास और हेम लता की आवाज़ अभी यार सुन रहे थे, ये हमारा तरफ से, मैंने भी सही जवाब को दिया है सवाल पे, ये एक नाम। और हम ये भी बताना चाहते हैं दोस्तों, ये एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद न्यूज़ की तरफ चलेंगे और रिक्लामा की तरफ, उसके बाद हमारा कोलिखा है रेडियो फाहून का मफलो रहीम बख्श, जिसे हम बूबू कहते हैं, दीदी कहते हैं, आज उसका जन्मदिन है। आधे घंटा हम प्रोग्राम चलाएंगे, उसका आधे घंटा का प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद फिर मिलेंगे शुक्रवार को। अभी हम यूं आया एक गाना चला करके, और यह गाना जहाँ शहर में जाता है, ये माँ है और एक माँ है, ये मेरा माँ है जैसा है, माँ से बड़ा है, ये भी अनोनिम है लेकिन माँ कह सकता हूँ, ये भी सही जवाब को दिया है। और माँ क्या है, भर दे झोली मेरी, बहुत ही अच्छा गाना है, और हम ये गाना आपको सुनाते हैं। माँ आपके नाम करते, सही जवाब को दिया है और बहुत ही बढ़िया गाना को मांग किया है।

भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं।

0: जी हाँ दोस्तों, देहरांग शहर से माँ प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया था, भर दे झोली मेरी, हम कभी न जाएंगे खाली, माँ के गोद से कभी खाली नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल और जवाब का प्रोग्राम। काफ़ी लोग है ऐप पे, अभी तक लोग मुझे ऐप कर रहा है, देखा जाए। ठीक है, फ्राइडा के हम इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, शुक्रवार को आगे चलाएंगे, लेकिन शुक्रवार से पहले एक नया सवाल है। ठीक से सुनिए, कान ठीक से सुनिए, बढ़िया से सुनिए, ये सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऊपर जाते हैं नीचे आती है, मगर हिलते नहीं अपनी जगह से। बोले ऊपर जाए जाहे नीचे आवे है, मगर अपन जगह से ना हिले है, मगर हिलता नहीं है अपने जगह से। इसका ये सवाल है, इसका हल आप मुझे दे दे, सवाल जवाब है, जवाब देना पड़ेगा। दिस इज फ्राख इन अंतोर, अंतोर की हमें देना है। ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, मगर हिलते नहीं हैं अपने जगह से। ये है नया सवाल, ऐप खुल चुका है मेरा, तार का नंबर है 9 0 8 3 3 2 0 0 8 3 3 2 0 0 8 3 3 2। अभी से मुझे ऐप कर सकते हैं, जवाब सवाल दे सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, मुझको देना ऐप द्वारा शुक्रवार के लिए, क्योंकि एक और आधा घंटा का प्रोग्राम हम बनाते हैं सवाल और जवाब के। शुक्रवार को, मंगलवार को एक घंटा का प्रोग्राम रहे, जे पहले देगा उसका हम गाने यूज करेंगे। ऐसे बात नहीं, जो बात में देगा नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, तब मंगलवार पर जाएगा, शुक्रवार पर जाएगा, ऐसे प्रोग्राम हम चलाते हैं। जैसे मैंने कहा है, मैं 12 बजे तक आपके साथ देती, लेकिन आधे घंटा मैं ज़्यादा रहूँगा, क्योंकि हमारा मफरव रहीम बख्श जो फाहून का अहम रूपसर है, काफ़ी सालों से यहाँ पे है और आज उसका जन्मदिन है। हम जन्मदिन मनाएंगे गाने द्वारा, आप लोग गाने सुनेंगे, जन्मदिन के गाने हम दो चलाएंगे और दो कुछ गाने सुनाएंगे मफरव रहीम बख्श के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है 8 सितंबर का। अभी से उसे हम कफिस्तर कहते हैं। दीदी भगवान अल्लाह करे हर एक चीज़ आपके कदम में रहे, हर एक दुख से बचा के रखे, सदा हमारे साथ रहे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं न्यूज़ और बयान के तरफ, जहां मैंने कहा था कि ये चलेगा, उसके बाद हम आपको ज़रूर ले चलेंगे जहां से हम लोग को जाना है। वो रहेगा आधे घंटा का हमारा फरमाइश चलाएंगे, तब तक के लिए हम आपके लिए चलते न्यूज और रिक्लामा की तरफ। यूं गया यूं आया,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज द फाहून हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9763352047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Ja, dus dit was nieuws en reclame. Zoals ik al zei, onze zal tot 12 uur blijven, maar een half uur zal blijven, want फाहुन का एक उम्र उपस्तर है मुफराव रहीम बख्श, जिसका आज जन्मदिन है और काफ़ी सालों से ये यहाँ पे ही रेडियो करता है। हम सब दिल से दिलो दिल से हम सब आपको आपके दुआ देते हैं दीदी बबू, पूरा टीम के तरफ से हम सब आपको खफीज तैयार करें, जन्मदिन मुबारक हो। और साल कितने खुबे ये हम नहीं पूछेंगे और हम सब दिल से दुआ करते हैं, ये भी मांगते हैं हमारा पूरा टीम, हमारा डायरेक्टर जो है कुमार गिराव, हर एक के तरफ से भगवान से ही मांग करते, ईश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना है और अल्लाह ताला से ही दुआ है कि आप सदा हंसते रहे, खुशी रहे, अपना जन्मदिन को मनाते रहे। हम सब आपके भाई लोग हैं, छोटे हैं, आप बहु उम्र में बड़ा है, हम सब दीदी कहते आज आपका जन्मदिन है, एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक। अगर हम आगे जनते तो आज पानी बरसे थे, लव बहुत शांता में खाना पकते आपके लिए, और खुशी का दिन है, हम खुशी वाली गाना गीत सुनाएंगे क्योंकि आज जन्मदिन है, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, हम सब मिलके आपको जन्मदिन रेडियो द्वारा मनाते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आपका जन्मदिन है आज, दिल से कहते दीदी, और हम खुश हैं। हम चलाएंगे आधा घंटा का प्रोग्राम आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए, और एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक हम ले चलते हैं मोतीमाला अंगद भोला सिंह के तरफ। फरियाद जन्मदिन के नंबर हम आपके सुनाते हैं, हम सब मिलके सुनते हैं, काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। आज हमारा अमृतर मफरव रहीम बख्श का जन्मदिन है, ऐप पे आ गया हमारा लश्तराज जो है आज का, वो सब दे दी आपको कहते हैं खफे लिसी तीर्थ।

राव रहीम बख्श, दिल से निकला हुआ दुआ है, सदा सदा खुश रहना और सदा तंदुरुस्त रहना, यही मांग है अल्लाह से और हमारा पूरा टीम है आपके साथ। हम और आगे जानते थे यहाँ लव बोट में खाना पकवाई थी और आज तो बारिश का मौसम है, नहीं तो बड़का बड़का झिंगा पक्कत, फिन बड़का बड़का स्नूक बार्स पक्कत, यमर के हम ना जहाँ थे आगे से ना ठीक है। जब से जलनी तब से मोई है, हम फिल्म चलते हैं, दुआ है यही हमारा पूरा टीम की तरफ से, हिंदुस्तानी फहर दीव की तरफ से आपको दुआ है, दिल से निकला हुआ दुआ है मफराव रहीम बख्श के, आप सदा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हम लोग के साथ रहे और मत भूलना हमारा तेके चेंज करो ओको फरमासी, हमारा साथ भी है आपका, आपका नईफ है, हमारा भाई है महमूद रहीम बख्श भी आपको फलिस्तेर करते हैं और उसके तरफ से ये गाना हम चलाते हैं, आपके नाम करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सो रहे थे बार बार दिन ये आए, नम सैल तिम फाहन नम सैल करो को फरमासी मेरा, हमारा ओम रूपस्तर के लिए मफराव रहीम बख्श का जन्मदिन है, दिल से निकला हुआ दुआ है और सदा रहेगा भी, खुश रहे सदा, खुश रहे और सदा तंदुरुस्त बना रखे अल्लाह ताला आपको। चलो हम चलते हैं, आधे घंटे का प्रोग्राम वक्त नहीं लेंगे, दविंदर सिंह शिवनाथ की तरफ हम चलते हैं।

जी हाँ, मुफरो रहीम बक, मुबारक हो आपका। आज आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी का दिन है। हम मिल के खुशी मनाते हैं इस वक्त यहाँ स्टूडियो से। हम सब खुशी आपके मनाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से ये मांग करते हैं, सदा हंसते रहे, हर एक दुख से आपको दूर करे, हर एक बीमारी से अल्लाह ताला आपको बचाए कर रखे। और हम चलेंगे आगे, ले चलते हैं सब रोसों के साथ। खुशी मनाएंगे ना तो हम खुशियाँ मनाते हैं, ठीक से खुशियाँ मनाएंगे, ऐसे से गाना चलाएंगे जहाँ घर पर भी चुनमुन कर सकते हैं। डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। आज हमारा बहन का जन्मदिन है, मुफरम रहीम पक्स का जन्मदिन है। 8 तारीख सितंबर का उसका जन्मदिन है और मनाएंगे, धूप से मनाएंगे हम सब यहाँ स्टूडियो में। हम बलाई चुकली पे खाना पकेगा, जे मांगे हाफिय को मई तो आ जाइए स्टूडियो में, खाना चुर रहा है इस वक्त। ब्रेन बोन मेथ के

जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ गलत हो सकता है ज़िंदगी में, हर एक गलत बन सकता है, हो सकता है, पढ़ने भी आज भी कुछ गलत हो गया है मुझसे। जो मुफ़र्रर रहीम बख्श है बुबू, उसका आज जन्मदिन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ने में कुछ आया कि आधे घंटा और रही जा दौर खान फंदा फयारदा, हम पढ़ लिया है, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, और ठीक है मैंने तो भी अपने तरफ से आज जन्मदिन मना दिया है, ठीक है मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर एक से मैं माफ़ी चाहता हूँ, भूल हर एक से होता है, आज मुझसे भी एक भूल हो चुका है, गलती हो जाता है, बहुत बहुत माफ़ कर देना दीदी। और ठीक है आप वो तो नहीं, आपको बुरा नहीं लगा है, लेकिन ठीक है माफ़ कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक प्रोग्राम था और हम ये बताना चाहते हैं हमारा जो एक बेस्ट रईसे बेस्तूर है जो 3 नवंबर का है, जो स्कैलप से जाएगा 8 बजे फरसामल हो जाते हैं और 9 बजे फरतरेक है, यहाँ से एकदम से उबरहाउसन एम दाख दाखतूर रहेगा, जाना है आना है, अगर आपको जाना है तो हमारा तार को नंबर पे मुझे कॉल कीजिए 06-4-8-0-8-3-3-2, आप कॉल कीजिए 06-4-8-0-8-3-3-2 पे, अगर आपको जाना है तो मुझे कॉल कीजिए। 3 नवंबर फरतरेक, 3 नवंबर वीर तुरे स्कैलप से हम लोग फरतरेक होंगे और वापस वहीं पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं, जो भी गलत हुआ है हर एक मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, एक वक्त होता है आने के, एक वक्त होता है जाने के, यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, हमारा जाने का वक्त हो चुका है, अब मिलेंगे फिर। काफ़ी लोग है ऐप पे, काफ़ी लोग सही जवाब को दिया है, लेकिन हम चलेंगे शुक्रवार को उसके फरमाइशे से, तब तक के लिए हम चलते हैं, देखा जाए हम प्रोग्राम को चलाते हैं और आप सुनते रहना 247, यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, आप सब चुने दिया फगे लॉफ फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से।

ये सुंदर दर्द भरी गीत भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जरूर से आपको यहाँ से चुने हुए गीत पसंद आते होंगे।

आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो ए दोस्त, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है, भीड़ में चलोगे तो साहस तो देती है, पर पहचान जो आपका है ना वो छीन लेता है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, मंजिल जब तक ना मिले तो हिम्मत मत हारो, और ना ही घबराओ, ना ही रुको, क्योंकि पहाड़ से एक उपमा है, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए ये गीत।

0: कसे को कसे को मेडली आपके लिए पेश किया जाता है।
1: बातें सिर तुम आती

0: आज ये सिके सिके तो हम थोड़ा से यहाँ से रोकेंगे और आपको लेकर चलेंगे थोड़ा से सुनने के लिए सोहर वाला गीत।
1: अरे चाय पीके

मंदिर हो म्यूजिक बाय दोस्ती म्यूजिशियन और सोहर के गीत जो हमके सुनाए कि चैती की तिथि रविंद्र भोला सिंह।

0: BYD Dolphin.
1: को यहाँ से लेकर चलते हैं और सुनने के लिए, और क्या मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ इस वक्त मुझे भी नहीं पता, चले मिलकर सुनते हैं।

शाबाश वीरेश जी, क्या आवाज पे हमने यहाँ सुने बैठक गाना, तो इधर से फिर तक के ये गीत निकाला गया है सलगता बीत के धुन पर, ससुर गली जाना है।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो वर्हुरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06

से मिलकर ना जाने क्यों आपकी आपकी बहुत याद आती है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सुनने वालों

कसूर से ये सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है। छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो जाओगे। और कहते हैं जैसे मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, जैसी मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करोगे, वैसे ही मोहब्बत तुम्हारी औलाद तुमसे ही करेंगे। यही लेन देन है, यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ के फर्क।

फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलता है लोग हजार, मिलते हैं लोग हजार, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलता।

मोहब्बत हो ना जाए ये तो हमारे और के आपके बस के बात नहीं है, मोहब्बत जो होना है तो हो ही जाएगा। आप जहाँ भी हो जैसे हो आपको एक शुभकामनाएं हम यहाँ से प्रकट कर रही हूँ।

शामू जी की आवाज में कि एक साथी चाहिए, कितनी उदास है जिंदगी, बस एक साथी चाहिए। जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात जैसे हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए।

से पूछ ही लिया। आज परछाई से पूछ ही लिया, परछाई जाने किस खादियों, आज परछाई से पूछ ही लिया क्यों चलते हो मेरे साथ। उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ।

हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है।

राजकुमार, राजकुमार एक मशहूर एक्टर था दोस्तों, और राजकुमार का लव स्टोरी मीना कुमारी के साथ कैसे रहा, क्यों रहा, काहे के रहा? दोस्तों राजकुमार का पैदाइश हुआ 8 अक्टूबर 1920 को, मीना कुमारी का पैदाइश हुआ 1 अक्टूबर 1933 में। किंग ऑफ डायलॉग फिल्मों में राजकुमार का कवि, जी हाँ दोस्तों राजकुमार का काफ़ी नाम रहा है, डायलॉग से बहुत दिल चुराया है। आपको याद है, आपको याद है ये डायलॉग, आपके पाँव बड़ी हसीन है, आपके पाँव बड़ी हसीन है, इसे ज़मीन पर मत उतारना, इसे ज़मीन पर मत उतारना, नहीं तो माली हो जाएगा। ये बात, ये डायलॉग है फिल्म पकीसा का, और राजकुमार मीना कुमारी से कहा था। ये डायलॉग के बाद राजकुमार मीना कुमारी के देखते रहा दोस्तों, और वहाँ पर जो फिल्म मेकर्स था वो सभी सोचता था क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना प्यार राजकुमार को हो गया था मीना कुमारी के साथ। राजकुमार दिलीप मंदिर में भी काम किया मीना कुमारी साथ, और उसमें होफ रॉल था राजेंद्र कुमार का, उसी फिल्म का सॉन्ग दिल एक मंदिर है।

King of Dialogue, राजकुमार। राजकुमार को मीना कुमारी से इतना प्यार हो गया था कि वो मीना कुमारी के साथ फिल्मों में काम करते वक्त अपना डायलॉग भूल जाते थे, सिर्फ उनका चेहरा ताकते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से राजकुमार को प्यार मीना कुमारी से हो गया था। जब फिल्म पकीसा का तैयार हुआ, तैयारी का नाम लिया गया, और तैयार करते समय मीना कुमारी का पति कमल अमरोही ये फिल्म को बनाया, तो वो धर्मेंद्रा को साइन किया था इस फिल्म में काम करने को। लेकिन धर्मेंद्रा और मीना कुमारी का प्यार का चर्चा, जी हाँ दोस्तों, उसका प्यार का चर्चा बाहर फैल गया था चारों ओर। तो फिल्म मेकर कमल अमरोही ने सोचा कि मैं धर्मेंद्रा को नहीं लूँगा, राजकुमार को ले लिया धर्मेंद्रा के जगह पर। फिर भी क्या हुआ दोस्तों, अब जानते, जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे पहाड़ बीच में आ जाते हैं उन्हें नहीं रोक सकते हैं। कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म पकीसा का एक सॉन्ग।

कोटलम पकीसा का फिल्म मेकर कमल अमरोही जो मीना कुमारी का पति थे वो धर्मेंद्रा को निकाल कर और राजकुमार को काम पे ले लिया। फिर भी राजकुमार दीवाना हो गया मीना कुमारी से या मीना कुमारी के ऊपर, तो कमल को बहुत से जलन हो गया। उसके बाद फिल्म पकीसा के बाद कमल ने राजकुमार को फिल्मों में काम नहीं दिया। राजकुमार दोस्तों, राजकुमार मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया, आपको याद है दिल अपना प्रीत पराया। इस फिल्म में उसी तरह के स्टोरी था जैसे कि फिल्म पकीसा का। फिल्म काजल, राज ने मीना कुमारी के साथ इस फिल्म में काम किया, और किस क्यों काम किया कि इसलिए कि उसके साथ फिल्मों में आप जानते शूटिंग के समय पर प्यार मोहब्बत करने के लिए। फिर भी राजकुमार और मीना कुमारी का फिल्म दिल एक मंजिल का एक गीत है, मैं हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

राजकुमार, वैसे राजकुमार एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, फिर भी उन्हें मीना कुमारी से बहुत प्यार हो गया था। मीना कुमारी शादीशुदा और राजकुमार भी शादीशुदा। राजकुमार को चार लड़के थे, दो बेटा और दो बेटी, फिर भी ये दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत थे। रुक जा रात, ठहर जा चंदा।

राजकुमार और मीना कुमारी के लव स्टोरी। वैसे राजकुमार से बहुत लोगों से प्रेम नहीं थे, इसलिए कि राजकुमार हमेशा बड़ा बात कहते थे। पुलिस इंस्पेक्टर से फिल्म एक्टर बन गया और किंग ऑफ डायलॉग। दोस्तों, जिस तरह से राजकुमार ने डायलॉग कहते थे, आज तक फिल्मों में, बॉलीवुड के संसार में आज तक किसी ने उस तरह से डायलॉग नहीं कहता है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।

दोस्तों मीना कुमारी का मृत्यु इन दैतक मार्च 1963 में हुआ, और जब राजकुमार को पता लगा, जब उन्हें खबर मिला कि उन्हें ब्रूड कैंसर है, तो राज साहब ने राजकुमार ने कहा, राजकुमार हूँ मैं, मेरा नाम बड़ा है, इसलिए मुझे छोटी सी बीमारी नहीं हो सकते है, मैं जब मरूँगा तो छोटी सी बीमारी से नहीं मरूँगा। दुख की बात यह है कि 12 अप्रैल 2006 में राजकुमार का मृत्यु हो गया।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फार ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे सितारों का सफर जो अभी समाप्त हुआ। सिंटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आए हो, किशोरदा के आवाज में आप ये गीत को सुनेंगे। उन दिनों में जब ये फिल्म थिएटर डिपार्टमेंट में पेश हुआ तो मैं सोचता हूँ लगभग 16 या 17 साल के मैं था और ये फिल्म को मैं 2 या 3 बार देखा दोस्तों, स्पेशल इस गीत के लिए, सॉन्ग के लिए। बहुत अच्छा गीत है किशोरदा का, सिंती सी शर्माई सी किसी दुनिया से तुम आई हो।

कल हो ना हो, कल हो ना हो आज तो है, आज हो ना हो ये पल तो है, ये पल हो ना हो हम तो है, हम हो ना हो हमारा दोस्ती तो है। सुरिंदर और आशा परेख का एक फिल्म चिराग, निहरी नीह शस्त्र में जो फिल्म रिलीज हुआ, इसी फिल्म का एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

पद्मा श्री मोहम्मद रफी की आवाज में तेरे आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक गीत और है दोस्तों, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे न थे, फिल्म का नाम है।

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ पावन इंसान रेडियो पर। आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

क्लास हो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसके गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज का या राजेंद्र कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम, इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वीएनटी मारा। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वीएनटी माला, उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शस्त्र के बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सी फोन तक फिर सी फोन पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेके चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हार्ट का।

माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहन हिन्दुस्तानी पर आप चुन है।

भनिने सानी दुपर आचुन है आज सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ वेलकम कहता हूँ मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका सेवा करने वाला हूँ सुबह लेको कभी शाम लेको

0: हर घड़ी करूं मैं तेरा इंतजार, कभी कभी इंतजार करते करते दिन बीत जाता है और रात भी कट जाता है, फिर भी इंतजार वो इस तरह से रुक जाता है। अखियों से गोली मारे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।
1: एक्टिव स्किन केयर एक्टिव्स फॉर एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।

जिसका डांस स्टाइल अलादा है दोस्तों, रवीना टंडन के साथ काम किया फिल्म दुल्हे राजा में, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए पेश किया। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बात लेंगे हम आधे आधे, किशोरदा एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ों में।

बात लेंगे हम आधा आधा, क्या वादा है। मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो प्यार जो तुम निभा न सको।

तू मेरा हीरो नंबर वन। जब दिन नहीं कटते या रात नहीं गुजरते तो आपको क्या करना है, फाह और इंसानी पर चॉइस के लिए आप रेडी हो और पूरे तरह से आपका दिन कट जाएगा और रात भी गुजर जाएगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, ये बात सही है या नहीं?

हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे क्या करना है, जल्द से जल्द शादी कीजिए, हो न सके कि ये प्यार जो है चिड़िया की तरह उड़ जाए। दोस्तों, किशोरदा, लता मंगेशकर, राफी साहेब और मुकेश, ये चारों जो उन दिनों में बॉलीवुड को हाथ में थमा था, ये चारों के आवाज़ में ये गीत आप अभी सुना, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करे। उसके बाद मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाता है।

की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, क्या समझा नहीं समझा, जरूर समझ गए होगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबा पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गए। मसीह मोहम्मद रफी की आवाज में साथ आशा जी।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, जब गीत मैंने सुना तो एक छोटा सा शायर याद हो गया दोस्तों। अंधेरा गया सूरज निकल आया, अंधेरा गया सूरज निकल आया, है बेवफा तूने प्यार मुझसे किया, तूने प्यार मुझसे किया और शायरी उससे कर डाला। क्या बात है।

तुमने काम किया फिल्म मिलन का सॉन्ग नाइटिंगेल लता एंड माइटी मुकेश के आवाज में आप सुनेंगे सुनील दत्त। दोस्तों ये कलाकार फिल्म एक्टर बने से पहले ये रेडियो पर अनाउंसर का काम करता था।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम से सच्ची काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

0: हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नहीं खनन दर तक यारख एक अनमन इस इन खस्लोतन फॉर स्टेलसल माथक में सांदन इन कौन की बीने बाप रे बाप ओके बिचारा के बन हुई गया एक औरत है अन फ्राउ इन मेरसोर और उभी बेई बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग विस्टोन स्नापन बोले को नहीं नन दर तक यार के कॉन्क्यूबेन बीएस बा वर्ड इरफान फरदाह हर स्टेलसलमातक ते हैवन मिसंदल हर मोबाइल टेलीफोन ते हैवन खपाक एन हर इन हाउस हैवन अफक्सलोटन ओके घर में औरतिया के मारत रहा भैया और जहलनेस ओके घर में ताला कर देवत रहा सनिचर की नहीं नन तुंदा कोकिस के बात है अनर लिख ना द पुलिस एन मेलनिंग करी दैट अ स्लाक्टोफर फ्रॉम मिसंदलिंग सिख ओप एन एड्रेस इन द रिसॉर्ट बफोंड de vrouw haar had woning weten te verlaten. Het was naar de buren gegaan om hulp te zoeken. De konor kwam op een ghar met zijn bichari nikerke. Or buren lage geil het hulp aanvraag kreeg. Bolle volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde verdachte zijn concubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onder dak had geboden. De vrouw ontkende die beschuldiging. Or diabole चीजें ना हुई सके है और उकर कौन क्यों भी ना जो रहा भैया बोले है का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा ते एकर बारे में सिपाही जो नहा पुलिसी रिहो ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फॉर फोकस टेलसन मातक सो हेवन में सांदल अब इन अख मोमेंट सो है ओ खार टेलीफोन हेवन आपको पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भेल है और बोले फरदाख्त नोक दिख सेल्फ द आफन ओके जब हम पकड़ ले सेगा जो न बोले नसान भूत रहा भैया onder een alcohol een verkeren hulp officieren ook pakken te bankeren zijn vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar de plaatselijke artsmensen te ibahuduke baant hè die i kam kreeg ze de mia pakken te bankeren raa en dekko bijja een bromfietser bijja een go bromfietser hè bolle hè ga aanrijding kreeg ze en jij ke gotro me ghus ge bijja balant in een goot दुख के बात ही भी है दोनों के बात है एगो मैं से थ्री व्हीलर में एक प्रोफिस रहा मेर फेल वेक में और एगो ओ तो अराइनिंग करके जाए के घुस गया एम्बुलेंस बेचारा के ले गए नेचुरली सिकन है सम जाते हैं डीएनवी के बारे में वास्क्यू करे सर नाम के फेल से ड्रैगन हेयर कैनन फॉर दैट द क्राइसिस आउट ब्रेक डीएनवी तो जाने कौन जी भैया डीएनवी के मतलब जाने हैं उस फेल खैद के हैगा डायरेक्टरेट नेशनल फेल खैद के आदमी हैं is juist een proactieve werkwijze nodig waarbij risicovoertuigen vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld. De sipahi is een directoraat nationale veiligheid gewijzen. Zat en zat bolle he dosto uitgang staat centraal tijdens de nationale veiligheidsconferentie ke 10 tarik of 4 tarik september me congres hal me sabane ekar bare me baanchit kalera minister bhi wahan paiga fan justice and policy aur md kil fp bhi wahan pe ba aur communication dis bhi wahan hai conferentie pe bolle he ga het onder meer om criminaliteit transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, bolle kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en zekerheid. Kwaarne mee zeven hoa baatjeet kari se janta. Hanis Manorat, hoa minister van Justitie en Politie ke raha. Bolle hega verwacht kare ki bijeenkomst. Bolle hega overleg blijft. Oh bolle hega waarnemer DNV directeur John Hega Major Gerard Kalka stelde de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd, bolle wanneer betrokken instanties dreigende eerder signaleren en gezamenlijke handeling. To je baat hega DNV ke bare mein hamari janta jo aap log ko hum bata dete hain. अब देखो भैया एक 75 यार के 75 यार के गाड़ी चलावत रहा भैया और जाए के एगो 17 बरिस के लुंडा के ओतो से मारी से लड़कवा मर गए है भैया 75 यार के रमिया रहा 17 बरिस के एगो लुंडा पर ऑफिस चलावत रहा बोले औ तो मोबिलिस बतरोकन वास बेन आंध रहे दे फन हो को हिस्ट्रा 75 यार खबर ऑफिस से बेचारा मर गए बड़ी दुख के बात है इन डर तक खिसस के और बोले ब्रोफिस्टर हो फन हो को स्ट्रास से उजात्रा मूलन पाथ पे एन आर द हाफन लान जात रहा और ये रमिया गैल है और बोले एक ऑफ दैट मोमेंट में से ऑटो का पार्केट ऑफ एट बैरम रहा जैसे द ब्रोफिस पाथ एंड ऑटो पाथ के बीचों में पार्केट कर ले रहा और जो ब्रोफिस हुआ अब जात रहा द ऑटो देख वास बखना दट रीड ऑफ ऑटोमोबाइल इज वेग ओम अन इट फॉरकेयर दिल ते नेमन वो घुसल जाए के ऑटो वाले के मांगे फॉरकेयर वाम जाए जो ब्रोफिस हुआ के और ऑटो बनवा बीचों में पार्केट कर ले रहा फोलकर जिस नाम से पुलिस फरलीन ने बस्तूर दार में खेन फोरा अन इट ओवर का फॉरकेयर है मार्क अन बोख ना रेक्स में द बदुलें फिया द दोरब्राख द वेस्टलक रही बांते बराई दार में और स्टोंड आंध रेडिंग में द ब्रोफिस और बिचारा मर गए है 17 बरिस के आज नहीं ओपले द खाद दे सोर दिंग इसको बुरे में से तो ये बड़ी दुख के बात है अब देखो एगो 24 बरिस के औरत भैया ओकर ओके कितना छुड़ी मारी से सबन फिरन त्वेद किया रखा मन स्टेक एगो फिरन त्वेद किया रखा आदमी अपन फ्रिंद के फ्रिंदेन के छुड़ी से बहुत भोंकी से नानी ब्रोको पोंदो के बांध है और ब्रोको पोंदो में एगो दोरपू के नाम बा द्रिपदा झगड़ा भैले भैया अंदरिशी ओवर सेक्स इन दौर एट खोल ओपन एरस्ट जहां यरमिया पद्री इन तो देख यार कफरी देखे और छोड़ी से बड़ा भोकाई भोकी से 27 तारीख ऑक्टोबर के बाद थे हमारे नानी तो ये भी तो दुख के बाद थे दोस्तों सिपाही पकड़ के ले गए हैं और बोले फोर वेयर भी मिल गए हैगा अकादमी में फिर इन तो देख यार यरमिया के पकड़ के बन भे ना पतावे हैं कि काहे के झगड़वा सेक्स के ऊपर भइल है बाकी वेल लिखल है ऊपर सेक्स इज दिस कबीर मींस तो ये बात है सुरीनाम देश ब्रो को पुंदो के खदेती नेर द भैया फिंदन क्लोइस दे द स्कोर मार्क वर्कसम है खदेती नेर द जोन जहलियों ने भैया स्कोर मार्क करत रहा कहाँ पे वेख ना रही बैरक में हुआ पे सब को क्लोइस पाई से जहलीवन पाई से भैया और काम करते में पाई से जहाँ पे सिपीर लोन भी अनवेशक रहा और बताए गए क्लोइसों में 5x5 सेंटीमीटर के उतरा बढ़का रहा द क्लोइस फॉर तो द खींच से बार स्पोरन फॉर फोर्सेरिंग इस फॉर आल्स नॉक नीट का ओपन और कहीं खाली है ना रहा हो भैया लेकिन क्रांति में लिखाई गई है कि एगो क्लोइस मिलल है हमारे जनता तो जो क्लोइस मिलल मिलनी सह कि उमा उमा पैसा रहा कटलिस के कटौल भैल है नानी कटलिस के कटौल भैल है नीखन तीन यार का फरदाख्त एगो नीख ससन डर तक यार का आदमी के कटलिस से खूब छपकी से भाई बड़ा कटाई काटी से ई भैल हैगा फ्लोरस स्वकंस्त्रात में झगड़वा भैल है नहीं खतिन यार के एगो लौंडा जाए के एक बड़ी कटाई काटी से झगड़ा में कटलिस निकारी से बन खेलवाड़ न करे सुरीनाम देश में भैया कटली से घास उस काटे की सब मनाई हुआ काटे के शुरू कर दे इसे एक बारे में सिपाही पकड़ कर के ले गए हैं अब देखो का हुए है और का ना हुए एक बारे में हमारी जनता आप लोग की ओर हम जा रहे हैं उलर्स की ओर उलर्स के ओर हम जाएगा जोन फे यहाँ पे के अंदर फोर्सेटर वार नेम इज फोर्सेटर है दोस्तों और फे यहाँ पे फोर्सेटर ग्लेन उलर्स बोले हैं तो जाने हैं हुआ पे सबन के फरकीसिंग हुई कि पार्से ही फोर्सेटर के हुई तो इस समय पे फे यहाँ पे फोर्सेटर हैगा ग्लेन उलर्स स्लाइड नीट ऐ दत है ना है पेर्स पार्टे कांग्रेस जो मई में होगा 2020 में अब न्यू फोर्सेटर फॉर द पार्टे वार्ड इन इंटरव्यू स्टैंड फास्टर रेडियो पे बोली सेगा कि बोले कि वो होएगा उलझ बना दरक्त दसे है देखो फोर्सेटर स्काफ खीन इंटरन De interne functie is hij naam na het overlijden van Janssen Sokie de voorzitterschap. Orbele Oeders ligt de prioriteit momenteel bij de voorbereiding van het congres. Op Kehoi Kenahoi, een verkiezing met Kejitiga Oeder Matura Mange He, Oeder Kabole He, Janneke Gayadine Mange He, Oeder Bhaya Sharman Mange He, Ieder Oelers Mange He. Over zijn eigen toekomst houdt Oelers de mogelijkheid open. Oelers waarschuwt tegelijkertijd voor een vroegtijdige interne verkiezingsstrijd. Volgens hem kunnen de vroege kandidaturen leiden tot verdeeldheid binnen de partij. Hij pleit ervoor dat de potentiële kandidaten zich eerst door hun inzet en werkzaamheden binnen de VHP profileren. Mensen, beleidsvisie John Rijka strategie van richting 2030. Hem jij ter buitenland. Minister Tsjechië onder vuur door interview en met vermomde activist. Tego Janneke Tsjechië, de minister van Buitenlandse Zaken, ook is hebben onder vuur gekregen omdat we een interview kregen. Bollega omstandigheden meedeed aan een nep interview. Bollego activist. Groep deelde beelden waarop te zien.
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

कलाना जाने जान सरस्वती माता दीजे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

न जाने ऊंच नीच कला न जाने ज्ञान सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

भेजैली है और बोले क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको हम ये गीत को बस सुना ही दिया है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। तो देखा जाए भैया, न्यू पॉलिसी पोस्ट एगो आयल है सूरीनाम देश में, और ये है uitgang centrum Paramaribo moet sneller optreden met incidenten mogelijk te maken. और एगो कंटेनर ने से वो बनाई के संबंधरी से ये बातचीत हो रहा है, और परमारीबो में ये बातचीत हो रहा है। हमारे जनता Volgens het Korps Politie is het vestiging van hulppost besloten vanwege drukte en toenemende activiteiten. Ke bare mein hai, yani Paramaribo mein bhaiya tu jaane hai kitna chor chohadi hai, to tulon to jaano hai, to ohi ke karan yani ki extra police post aayegi hai हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो अब देखो, कमा है चिजुआ कि चिजुआ ना कमा है मौसी, वही तो बतिया है, वही तो बतिया है। पुलिसी पोस्ट तो आयल है, आप देखो कमा है कि ना कमा है, तो लोग जानो चोर चहाड़ी शहर में कितना घूमे हैं। सोमेल रेगिस्ट्रांत में आयल है गो पुलिसी सिखबार आनवेशक इस एन बे इंसिडेंट इन द्रुक आउटगांस गबीस नेलर कान इन बखराइबन। और बताई गई है दोस्तों, फॉल्गंस हेट कोर्स पुलिसी बोले नो साकलक है गा hoofdinspecteur Jere Sarwan Kumar Kasi, waarnemend hoofd van het kabinet van resortcommandant van Paramaribo, benadrukte dat de hulppost juist in deze omgeving is opgezet om politie dichter bij het publiek te brengen. Al janne soms deze, hoe heb je het janne ketra derro, ghoome to bhaiya ka bole hai ga, zwervers en zo. To maar ohi ke bichwe mein se bandhari ga ek ka bole hai ga, ego extra politie post. Na de toespraak werd de sleutel van een nieuwe post symbolisch overgedragen. Vervolgens knipte men het. Oude ik er waarin willen parlement aanwezigheid in het uitgangscentrum moet de politie beter in staat zijn toezicht te houden bij de openbare minister. De abdeko ichiwa kama het drugs ke bare mein teri aap log ko suna di bhai, drugs ke bare mein hum bolite log ke kuch sunai di

जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि और आगे क्या क्या होता है वृक्ष के बारे में। विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम एच सूरीनाम ई कौन ची भैया सबन पाई से वृक्ष ऑन दैट इन विरोक्ष जो हम लोग विरोक्ष बारे ला भैया जो नदमी अपने घर में विरोक्ष बारे पूजा पाठ खात वो कर खातीन विरोक्ष कालचस में दुर्लभ बौद्धम एच सूरीनाम आई लव। देखो कौन चकल से नीदरलैंड के दुआने पकड़ी से ऑनलाइन वृक्ष आन खतरोफन दी बेहद भी सुंदर मनीर वार फर्स्टॉप एगो विरोक्ष खालचस में छोटा छोटा कुमकी है जो विरोक बरे है द खालचस ब्लीक अंत से एनफोर्स इज फन दुबल बौदम वार इन द फरदो फन मिडल वार ने फर बोरखन दुई दुई बौदम रहा हमार भैया विरोक में दुआ ने मांगते द फोंस ब्लीकन बकेन फिया फेसबुक और बोले फोटो फन ऑन द स्केप्ट खुदरन deze wierook overschaaltje brachten je heel en brachten je wel heel snel en hogere sferen. अब देखो यहाँ बतावे हैं नीदरलैंड के दुआने कहाँ कहाँ पावे भैया वृक्ष फ्लैशेस डेट में पावे हैं ब्लांद्रे में पावे हैं कुकुही में पावे हैं कड़ाबू में पावे हैं पालम दारू में पावे हैं झुरमछरी में पावे हैं फ्रुख्त में पावे हैं ढोलक में पावे इंस्ट्रूमेंट में पावे हैं कैसबरोद में पावे हैं सिर खुद में भैया जो नुआ पे आम उम सिर में धरन ओमा पावे हैं नरियर में पावे भैया पिंडा सांबल में पावे हैं पॉपकॉर्न में पावे है झूर मछरी में पावे जो सब सूरीनाम से आवे है बड़ा शर्म लगे भाई बतावत बाकी नीदरलैंड से पुलिस ई सब चीज में पावे है। अब जो नदमी मांगी भैया सच्चे के बनरियर पिए पिंडा सांबल खाए सब देखिए फरबूद हो जाए हम लोग कौन ची मिलावे द आंख ट्रॉफ फॉर द ओपन मिडलैंड से दो नीदरलैंड से अथॉरिटी इन बसला खनोमन इन मिडलैंड फर्नीतर और बोले एर्दर ऑन द स्केप्ट नीदरलैंड से दुआन ओक al drugs verstop तो ये बड़ा अफसोस के बात है कि हमारे देश में देखो भाई सूरीनाम से पैसा कमाए खात कौन ची ना एक सब करे तुलन जैसे जानो है हम लोग के नीदरलैंड में फियोत है ऐसे सूरीनाम में ग्लात है दोस्तों ऑंडरसुक बस्कुलकिंग बाय तास लैंडफेल वक्त रिजल्ट नाफ एगो लैंडफेल हैगा भैया वो बतावे हैगा राफा मिनिस्टर के वेंडी यप आयु डायरेक्टर बा टेली कम्युनिकेशन के अथॉरिटी सूरीनाम क्योंकि बोले तास बोले तो schorsen niet heeft gehonoreerd moeten zowel de directie als raad van commissaris volgens minister Raymond Landveld van Transport bolle hega communicatie en toerisme hun werkzaamheden voortzetten en bolle Japayu verman met de beschuldiging vanuit de RVM ook een eigen rechtszaak heeft aangespannen tegen de leden van de raad van commissaris bolle de uitkomst daarvan moet volgens hem worden afgewaagd. Dan wil ik glad onderzoek krijgen om zeggen of die beschuldiging op waarheid berusten. Of wil ik glad onderzoek heeft RVM, RVC, Raad van Commissaris, wil ik Landveld mogelijk ego accountant die daarbij is in te zetten voor onderzoek. Dan wil ik ook accountant die zijn jij hoe ik Landveld wijs onder meer op wet elektronische communicatie die al geruime tijd bij de Surinaamse Nationale Assemblee ligt en momenteel wordt bestudeerd om na te gaan waar verbetering nodig is. Tot je maand ik glad.

इतिहास में आप लोग को हम इस गीत को भी सुना दिया है। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों,

दोस्तों एक फरदख्त सूरीनाम ही में हमी है तो वहां एक फरदख्त इस आनखौदे फॉर डिफस्टल आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में 25 तारीख भैया एक नहीं टेलीफोन लेके जा आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी करके भाग न्यू ईयर का फोन वेक में 2 तारीख सितंबर की सिपाहियों के हीरा वेक में पकड़ ली भैया सोना के रास्ता का नाम है हीरा वेक वहां पे दौराई के जाए के सिपाहियों के पकड़ी से तो ये तो बहुत ठीक बात है भैया मन में खुद फॉर वार्निंग ऑफ कसेट एक आदमी भैया ओके समझ दागे रहा अपने कौन डायरेक्टर जो है दयालित के आनी सादी ऐस नाम सैफरे खवीजन डायरेक्टर फीका ई के बोले हैं फीका ई जो पार्लियामेंटारिया से एनडीपी के नेचुरल असेंबली में बोले हैगा जो फेस क्यूरिंग्स इंस्टीट्यूट है जूलियट वोंगसोरे जो मलाइनी है बोले ओके चाहिए ओकर नाम सेफर करे के बोले फोकस हार ब्लैक आइट एन अनफंकलिक अंडरसुक दैट एर गेन स्प्राक इज गवेस्ट फॉर फाइनेंशियले फ्रॉडलेसे हैंडलिंगन टरवेल द फॉरमालिके डायरेक्टर ईर्दर डोर द हुइडिक राड फॉर कमिसारिस में देर खलेक बस्कुलकन जो जैन को कॉन्फ्रेंटियर ते इस सब आदमी के बचावे भैया कि देश जाई के हुआ सुधारे है ये बड़ी दुख के बात है हमारे देश में एगो हील खसेन के सिपाही पकड़ी से दबूर बैठे में नानी खसेन वहां भर के पलवारवा भर के पकड़ी से आन होल्डिंग फॉर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त 2026 प्लांट्स पुलिसी लॉस वार्स की उस को तो भैया तब पलवार भर के जाए के सिपाही और पकड़ पाई से तो ये सब बात भी होए भैया और बताए गए हैगा SLM stop seizoen vluchten naar Barbados per 30 september. Barbados pe jon SLM ure bhaiya 30 september se vluchten ban ho jai par hamari bo Georgetown Barbados me bole hega vacant ho jayega Suriname Airways volg aanpassing naar evaluatie van de geplande seizoen operatie en maakt deel uit van de voortdurende netwerk over de luchtvaartmaatschappij laat meten Georgetown in Guyana te blijven bedienen. और भैया ये सब बात है सूरीनाम देश के जो आपको हम बताते हैं हमारा समाचार धीरे धीरे खत्म आने के हुआ एक दो समाचार और सुनाएंगे टीम सूरीनाम क्लार फोर सही अमेरिकन स्पेलर इन अर्जेंटीना अमेरिकन स्पेलर जो बा ऑडिशन 12 तारीख तक में 26 सितंबर 2026 में अर्जेंटीना में साथ साथ रामसरन वेटवेजिंग नोडक मिलिटेर ओवर यूनिट vergoeden militaire lokke vergoeding chahi pawe ke aur batawe meer dan 1700 sikan hega door gratis school maaltijden indonesië indonesium jo so so madmi khai baatat raha 1700 admi hua bimar hai nani ab pata na hai indonesia mein kaun khai aise dhardi se wo hai medan yafa mein Benchuri naam heeft kennis genomen en genoeg maar mismoed om bestuursculturen te veranderen. तो बहुत बहुत समाचार है जो आप लोग को मियां दिखाई दिए हैं कि कैसे कैसे तोरिया है रेक्टर्स अमेरिका के वेकर चुरीलत फरवेदर इन द साक लिंसली क्लेंजी के बारे में तो एक बारे में बता रही और तिबित में भैया जो ओवरस्ट्रोमिंग भइल हैगा नेपाल में खस्ती खाना एनन देर तक भैया एनन देर तक और आदमी आइले ओक वर्दन ऑफ 531 मेंशन फरमेस तिबित Chinois ke des me ba Chinese media maakte eerder nog melding van 21 omgekopen slachtoffer Terraso en me door marge he hajaran personen worden nog vermist maar agenta to ye sab maant hai Chinois des ke aur Sri Lanka ke ki utra admi hua pe aur maral bhaiya Brussels trek nog 500.000 euro uit voor hulp van Nepal 500.000 euro Brussels up पठाएगा का बोले हैगा नेपाल में हुआ हेल्प करे के और जो उतरा स्लख तो फरसुआ भैले उतरा आदमी हुआ मरल हैगा हुतुस रखेरेंग रूपन तक तक रहे तक तक दो
dan bij gevechten tussen Hutu en regering. Toen in Afrika met Gujaga Hutu he, hoe go volk he, regeringleider se guerrilla is op he, al ladi se, otra admi maral hega. Bataan wij Denemarken, Kabul hebben via 2027 naar terugkeercentrum buiten Europa. Jane en miljoen door aanwee migranten. Bataan wij gegeven verwachten in 2027 mee klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenaamd terugkeercentrum buiten de Europese Unie. We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van het terugkeercentrum buiten de EU en zijn nu dichtbij dan ooit tevoren, zei minister van Immigratie en Integratie. Bolle in de verklaring vanuit Denemarken verwachten we eind volgende jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar de partnerland te sturen. Op bolle vier andere landen waaronder in Nederland hebben soortgelijke plannen ontmoet. Zijn ambtenaren, ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen. Kijk er maar mee. Seven jaiga batia bhaiya aise batia hai hamare nani. To jaise jaise rahega aap log ko hum bas apna samachar batate hi rahenge.

और हमारे यारो गुलाबी आंखें जो है ये मॉरीशियस के लोग की इस तरह से गाते हैं। तो हम आज आप लोग को सुनाते हैं, हम चलते हैं उमेश महावीर की ओर और वो भी कुछ सुनाएंगे और तितल है मितवा।

और मितवा उमेश मोहाबीर का ये सॉन्ग, उसके बाद हम चलते हैं कुछ लोकल सॉन्ग हम आपको भी सुनाएंगे हमारे सुनने वालों, और ये लोकल सॉन्ग हम मॉरिशस के आप लोग को हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं संजीव बुलाओ तोर हमार लंबूर।

0: चोर की न चाहिए हमारे यारो। तो दोस्तों जैसे बताए गए हैं हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है कैनच सालिक की ओर हम चलते हैं। एगो चटनी सोका लेकर ये आते हैं।
1: You telling me what? I need to stop drinking and lime and I can't.
0: और बोले stop drinking और क्या क्या भैया हमें गीत की जरूरी है।

और तुके देख ली हम तो बोले हम बहुत खुशी होई गई ली। तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग हम आप लोग को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम और एक लेकर चलती है, ये कामना के कोनो गीत है भैया, आओ मिलकर सुना जाए।

और ये सब अच्छे अच्छे गीत जो आम को हम सुनाते हैं वो सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनते दोस्तों। हम अगला गीत की ओर चलते हैं, वो भी एक भोजपुरी सॉन्ग है मॉरिशियस का।

बुलबुल के, ओकर पारों के और ओकर सबके कौन बालमा ओके भरमावे है। हमारे यारो तो ये गीत आपको हमने सुनाया है, तो उसके बालमा के यानी पारों के कौन बालमा भरमावे है। तो अब हम चलते हैं अगला ओ बालमा की ओर।

अपन बलमान से मांगे हैं तो बलमान बोले हम जब ना लावे तो दूसर दुल्हनिया ले आवे, तो औरतिया बोले नहीं बलमान हम ही के तू ले ले। तो ये सब गीत आपको सुनने को मिलता है भोजपुरी जोन से। दोस्तों एक और हम आपको सुनाते हैं।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे, और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता रामकिशुन।

0: Eddie String Studios.
1: दोस्तों विकारी सिंह का ये है ये गीत हमारे यारो, उसके बाद में हम जाते हैं और आगे को, और वो है पर्वत पांचू की उर।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

खेचा आ हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

बाहरों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

तुझे बढ़ते रहे जिंदगी के नशे, अरे कहने दे जमाना तुझको कहते जो बुरा, अरे कहने दे जमाना तुझको कहते जो बुरा, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

0: इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

पहाड़ों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे, बह गए कदम कह रहे हैं तुझे।

0: जहान से, है दिल तो नजर इस जहान से।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं।